0: ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट का वक्त खत्म हो चुका है। इस मुकदमे का फैसला अगले महीने की 18 तारीख को सुनाया जाएगा।
1: ओ, मेरे कत्ल की पूरी तैयारी कर ली तुमने?
2: तुम भी कातिल, हम भी कातिल। अब वक्त जाया मत करो, अपने जिस्म को इन कपड़ों की कैद से आजाद कर दो। तुम्हारी जवानी की किताब को करीब से पढ़ना चाहता हूँ।
3: रेडिएशन, द नंबर वन स्टेशन फॉर द पागल एशियन। पागल एशियन,
4: व्हाट द, यू ऑलवेज से no one has sent in or referenced a line more pervy or lecherous than that one. That's what I'm trying to say. And you know, you can go to the Punjabi butchers, whatever it is, if you eat meat in a restaurant, and you know there's always someone horny there, yeah? Right at the end, right, they're looking over at, oh, looking at your girlfriend, whatever it is, man, it's just too much. Anyway, Mukaddama, Jazzy B, Sukhchindra Chinda, Local Attraction. And Radiation, the number one station for the Asian invasion. Let me hit you with this, yeah. Brain is fully firing up. It's Diary by Badam. Here we go.
3: Radiation, the number one station for the Pagal Asian.

0: Radiation, the number one station for the Asian invasion.
1: जिस दिन मैं कोई गोरी तितली देख लेता हूँ ना माधुर, मेरे खून में सैकड़ों काले कुत्ते एक साथ भौंकने लगते हैं। उस दिन मैं ब्लैक डॉग पीता हूँ।
2: क्या बात है?
3: Naja, Pavdaria, and Radiation, the number one station for the Asian invasion. But who else is on this? Yes, that's Surya Vanshi, Nikita Gandhi, Anishk Bakshi, Manav Sangha. Salute Times Music India, man, sending over a whole bunch of tracks as well. I'm going to look at Revere Records as well, what they're sending me over as well. Let me play out this one. I love this album, For the Culture, by Raj here. This over here, Visa, is a skit. And I played out one of the skits around the start of the show as well. Very valid points over here as well, you know, about work ethic.
0: Radiation, the number one station for the Asian invasion.
4: हाँ जी, हुण आपां जाणे अगले कॉलर तों। आ सौथाल तों ही आ, साडे पिंड दा मुंडा ही आ फिर तां। हैलो,
5: व्हाट्स हैपनिंग ब्रो?
4: हाय, हाउ कैन आई हेल्प यू?
5: जस्ट गॉट अ बिट ऑफ एन इशू। सो यू गॉट दिस लॉन्डर फ्रॉम पंजाब, फ्रॉम द ओल्ड मैन्स पेंड। ही इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज।
4: व्हाट्स द प्रॉब्लम?
5: यू नो व्हाट इट इज, ब्रो? ही इज ओवर हियर ऑन वन ऑफ द स्किल्ड वर्क वीजास।

0: अच्छा है।
1: मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा बेटे, और तुम उन सवालों के जवाब दोगी।
2: ओके डॉक्टर।
1: रिलैक्स, रिलैक्स योरसेल्फ, टोटली रिलैक्स योरसेल्फ। मतलब अपने हाथ पाव बिल्कुल ढीले छोड़ दो, अपने दिमाग पर कोई भी बोझ मत रखो, और अपना पूरा ध्यान मेरी तरफ दो।

0: Radiation, the number one station for the fog of Asia.
1: चलो भाजी
2: चल चलिए फिर।

0: Radiation, the number one station for the fog of Asia.
1: चलो भाजी
2: चल चलिए फिर